0: वाह वाह,
1: तुम ही तुम्हारी दुआ लगता
0: निमुनि
1: निम्मा दे
0: निम्मा दे दो. ओके ठीक है, इबे इंगे आने अंगें वर्षन ना फिरी है वर्षन काकु के लवे गेरिस तें भी
1: अंगासो फिरी हैं इंग्रेडी
0: हाँ मुहम्मद रफी के लवे दो है मीमा.
1: या
0: ओके है मेरे लवे गेरिस तें इंगे वारं उफावेरे दुहा कंग ऐ दें मिहा इसे चखान दो ये बे कम ए
1: मिखाने हम कोरिया में
0: ए अभी मत मिहा फेशी देती
1: ओके
0: ऊपर दो के दे बाकी बेला.

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: मोदी है एक मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम

0: למה לקוף בהו?
1: למה?
2: דיבה היא FM, נועד היא עקם מגהרץ.
3: ए मावे सुट्टा दैफिंग
4: आहार में सुट्टा दैफिंग
0: ए लिस्ट को मावे सीमना ला
5: अमिल्ल फैसा आंदागें अमिल्ल हशिंगडा गेल्लुन दिरमकी किहा मोय कमे ए में मावे सुट्टा दैफिंग
6: दुमफई आहार में गे हाथुरे दुमफतु के इस्तेमाल कुरुम के साबुन दिमावा सिहि मसल तोगा आहार को हम मिलियन वुरे किना मीहु मरवा कमा तफास हिसाब तकुन दक्का फस नुजेही अवह दुमफतु के इस्तेमाल कुरुम हुट्टा लमाहिंगा
7: ए कोड़ो को फाहते जेही लमा आहार में यहाँ कैरी गति में मीहा उन्दगो आने एना जा पिन नंबर नु फ्रेंड हिसाब एगंती बे मानी
8: आ कोबा मिता हुना डस्टबिन एहेरी दो मेवेस डस्टबिन कनु ला मानी
9: ਪੇ ਜੇਫਾਵਾ ਮੀਹੇਗੇ ਫਰਾਤੋਂ ਇਹਮ ਮੀਹੇ ਕਬਾਲੀ ਫਤੁਰ ਦਾਣੇ ਮੁੱਦਤ ਕੀ ਕੋਬਾ
10: ਬਿਹਨੇ ਗੁਮ ਗੇ ਹਤਰ ਦੋਸ ਕੋਰਿੰ ਬਿਹਨੇ ਗੁਮ ਫਹੁ ਹਤਰ ਦੋਹਾ ਹਮੇ ਬਲੀ ਜੇਫਾਵਾ ਮੀਹਾ ਕੇ ਫਰਾਤੋਂ ਇਹਮ ਮੀ ਹੋਣਾ ਬਲੀ ਫਤੁਰ ਮੁਗੇ ਫੁਰਸਤ ਹੋਵੇ
11: ਹਿਮ ਬਿਹਿਗੇ ਅਲਾਮਤ ਫੇਣੀ ਜਨਮਾ ਲਸਨ ਕੁਰਬਾ ਸਿਹੀ ਫਰਵਾ ਹੋਦਵਾ
12: ਦੱਤਾ ਕੋਲਮ ਨੋਰੇ ਮੇ ਗੋਂਡੀ ਗਈ ਸ਼ੀਂਦੇ आहारे कोलम हो रहा फाना दत्ता इशी दे
13: हाँ दे अंगले खोको वाला बड़ा शुक्रिया
12: कुद्दे वे कुड़ा कुड़ा है वो कमकों ऐह मी है गेदा तोरो अमावे उफावेरी बेदाने
2: दिवे ही एफएम नो दिए के मेगाहर्ट्ज़

السلام علیکم نو دی ہے کہ میگ ہرٹز دی وی ایف ایم گے ہیمین یوتراف میسلز لا گے مولین آ شو ایک مرحبا دنوان ہیمین یوتراف میسلز لا گے شو تو گ ارمنگ می کینست مندنی ارمنگ گے اڈوی ہن تیرین گے ہیتو گ فوریف وا واہکتن می ای واہکتن حصہ کولم ارمنگ ہڑوا لا فوا رکھا تیر ما ہولے سٹی یکون کور میسج کون نو تا امیل اڈن ریکارڈ کو فویس ای واہکتہ تی وی فنن ارمنا حصہ کرے وینے और मैं ये वाह के तक गिनती नहीं रीति लवता का एकीगा निमित्त हफ्ता गवर्नमेंट आडू ही हितों के एम में फोम मिनु का सीर रुकूरे भी दुआ को इस दुलों बेर उनु कोल्ले भी होरी आसरु का दवाह के तक एक अमाकु मिफ़ाहर और मैं मिस्राव में तिमुलें तफात सोफ़ाए का हायातों ए अगुनो कुरेवे फत इखलास तेरे एक्वेरी कम के वाहा कतं आधे मिहफ्ता के मालुआ की देरी उलम बदल कोले एक्वेरी कम आयला के गुलन थके की और में ना कुदरतन लिपे नियमते एकमाकु एक्वेरी कम की और में आमिले इख्तियार कुरा गुल में मिहफ्ता का मिदक्कनी देरी उलम के वाकी हिसाब कुम बदल वेला वाकी वेकिंदी एक्वेरिंग के वाह के नो और मैं के तीरुलम के मिश्रा एकी बदल कोले एक्वेरिंग के वाहक बालिमाडु कम के वागुतो के एही तेरे वे आमिल ला नफसा इतु बारु नेंगीरु वेस और मैं के होफिन तकं इतु बारु कुरी आदि और मैं के एकनी वेरी वागुतो ताऊगा एकनी वेरी कम फील वैतिंग एक्वेरिंग के वाहक एमिया कुनुवी नमा और मैं के तीरुलम मुलिंग एहिं गोतका बदल वे के दाने फदा उन्दकु तंडिवल ताऊगा अबतुस और मैं नायकी का साबित वेति भी एक्वेरिंग के वाहक ए कुडेरु के एक्वेरी कमगवियस ऑफिस रहमत तेरी नुता एमे बेनु विवगुतु बदलवी मीहे कमगवियस एमीये गे वाकतन अडुहं और मे मिहफ्ता गमि तिबि तयार मिहफ्ता गे शो गर्मे गेनिस्ते मुंदानी और मे गे एहुन तेरिन मि मौलुग मिहफ्ता ग फोनु वाफवा मेसेज तका सिटी तं और मे गे व्हाट्सएप सोशल मीडिया पेज तं आदि पीएसएम एआई फोनु वि सिटीया मेसेज तं एकमको मिहफ्तागस मी मेसेज तक दियोंगे कुरिंग फुरतम हमर रीति लावेंग अडवा हालानी